कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, हर्रम तर्रम दुनिया के कैसे कैसे गम, कहीं ज्यादा कहीं कम।

प्यारी प्यारी मगन मीठी मीठी चुभन प्यारी प्यारी तड़पती हूँ मैं आरज़ूए छुपाए तड़पती हूँ मैं आरज़ूए छुपाए।

जेब जब तक है तेरी भरी, तेरे पहलू में नीलम परी। जेब जिस दिन भी खाली हुई, शान रह जाएगी।

0: 89.6 FM।
1: बधाई है, बधाई है,
2: बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, आज राम जन्म की बधाई।

0: राम के मन में सीता का ध्यान,
1: प्राणों की आरती जलाई है जलाई है।
2: आज राम जन्म की बधाई है बधाई है, आज राम जन्म की बधाई है बधाई है।

किसी कहो जाने मुझे मालूमा अब न बताओ रे आओ आओ रे आओ रे मुझे मालूमा अब न बताओ।

तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा तेरा मेरा मेरा तेरा था ए घटा परत जा।

तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा घटा।

तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा तेरा मेरा मेरा तेरा था ए घटा परस जा।